0: नित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब

0: अपरस सागल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: पर दया रूप न पीखा नेत्र साध की टहल संत संग हित
1: सुने कहूं की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद दिखिया पर हरा मन की वासना मन ते तरा
1: जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
0: जैसन सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न
1: कर्म करत होवे ने कर्म दिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचा केवल भक्त कीर्तन संग राचा
1: अंतर सिमरूं गपाल सब पुर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे

0: त्याग भिख्या जंजाल।
1: धन धन कह सब कोई, मुख उजल हर दर कह सोए। चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो।
0: साध की तूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान।
1: साध सिवावट भागी पाइया, साध संग हर कीर्तन गाइया।
0: अनक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे।
1: कोट गही संतह दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया।
0: जी वालन हार, भूखे को देवत आधार।
1: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पुरख लिखे का लह ना पाहे।
0: सब किस तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग।
1: जप जान सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी।
0: कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया।
1: जाका मन गुर की प्रतीत, तिस जाने आवे हर प्रतीत।
0: भगत सुनिए ते हो लोए, ताक जाके हृदय एको होए।
1: साच करनी सचता की रहत, साच हृदय सच।

0: बूझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभु प्रभु सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया करन करावन तिन मूल पिछानिया
0: जाके हृदय विश्वास प्रभु आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: कहते निरपो होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहि समाना
0: बस्त माहि।

0: अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ।
1: आठ पैर प्रपिखो नीरा, मिटा ज्ञान बिनसा अंधेरा।
0: तुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छा नानक फल पावो।
1: अल्प पल्प दोय लिहो सवार, राम नाम अनपर और पार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसा सो साच प्रिखिया।

0: राष्ट्रपदी
1: संत संग अंतर प्रभु ने प्रभिता नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिगरी एक से घट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे
1: नौनिद अमृत प्राप्त का नाम देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाल अनहता नाद कह न जाय जग विस्माद
1: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक किस जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत
1: माहे आकाश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: बन तन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: और पानी बसंतर माहे चार कुंड दह जिसे समाहे
0: तिसते भिन्न नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नान सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोला आप डोल न कबहु डोला
1: कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुण मोल
0: सर्व ज्योत मैं जा की ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत
1: प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं इहो विश्वास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म
1: संत जना सुनो सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिस की ये रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसी बार पियो ही नानक दर्शन दी सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्राप्ते सगली उत्पत
0: तिस भावता करे विसार तिस भावता एकंकार
1: निक कला लकी न जाए जिस पावे तिस लय मलाए
0: कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर
1: अंतरगत जिस आप जनाए नानक तेज जन आप जाए
0: सर भूत आप सर्व नैन आप ही खनहारा
1: अगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी इनी माया
1: आगे मद लोपत रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे ता लय समाए
1: ते हुए सो नाही बुरा उरे कहूं किने कछु करा
0: आप भला कर तू त्यात नीकी आपे जाना है आपने जी की
1: आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग राच
0: ताकि गतमित कही ना जाए दूसर होता सुजी पाए
1: इसका किया सा परवान गुर प्रसाद नानक एहो जान
0: जो जाना ते सदा सुख होए आप मलाए नए प्राप्त सोए
1: धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया
1: नावन का एहो स्वभाव जन के संग कित आवे

राख मोहे मन करम वचन विचार चौपाई मैं नागने से प्रथम नाऊं किसन विसन कब हूं न त्याऊं।

गुरु प्यारी साध संगत जी कीर्तन की तनख हाजरी आप जी ने प्रवान करनी जी। आओ जी हम साड़ी आदि सत्कार जो ज्ञानी दलजीत सिंह जी विद्यार्थी दमदमी टकसाल उन्हां पासों रोजाना की तरह लड़ीवार इतिहास के प्रसंग सरवण करना करिए जी। आप जी ने फतेह गजाउणी असीस बख्शिश करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

पापी होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनोअंधनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिंग को होए जाते तेरे नाए वासा।

अवगम अगम असंखलोम असंख कह सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सरनाहे जे फरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता ना बिणनावै नाहीं को थाउ कुदरत कवन कह विचार वारिया ना जावै एक वार जो दुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन देह पानी धोता उतर सोखे अहम मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईया ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै तो नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्म आव हो जाहो तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ साब गुण तेरे मैं नाहीं कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी ब्रह्माव सत सुहान सदा मन चाव कवन सुवेला वखत कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहव कवन जित हुआ आकार वेल ना पाई आ पंडती जे हुवै लेख पुराण वखत ना पायो कादी।

पड़े करहि बखयाणम। आख ब्रह्म आख इंदु आख गोपीत गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख केते कीते बुद्ध।

विचारे सोई सोई सदा सर साहिब साचा साची नाई है भी होशे जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पद झूली ध्यान की करह विभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश स आदेश आद अनिर अनाद अनाहत जुग जुग एक उवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै।

सर्पदशांदो त्वा प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छांदो त्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बपूते प्रमादं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बपूते अनंगी अनामे दृपंगी दृकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी।

भगवती शांदो त्व प्रसाद के जहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं मेसु सलाम हैं समस्तर कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामन करीम हैं के राजग रहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राजग रहिंद हैं गरीबन कुमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गरीबन खराज हैं गरीबन निवाज हैं रिफुल फिकाना हैं राशुल फिकाना हैं कलंगन प्रणास है समस्त निवास है गंजन गनीम है रजायग रहीम है समस्त जुबाह के साहिब करा है के नरंग प्रणास है भैस्त निवास है के सर्वल गवाना है हमेश लवाना है तमाम तमीज है समस्त अजीज है परम परम ईसा है समस्त अदीस है देश अलेख है हमेशल अपेख है जिमन जमा है विकुल इमा है क्रिमन कुमार है के जरूरत जमाल है के अचन प्रकाश है के अमृतो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमृतो विभूत है के अमृतो पसा है के आत्म प्रभा है के अचल अनंग है के अमृतो अपंग है मद पार शांत त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गन दाम अर बर गंज हर नर प्रपंच अन गन प्रणाम।

ते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नम आस आसे नम वांग बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे दृपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी शांद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाज आकाश अगंज पंज लख अपख अकाल दयाल हरेख अपेख अनाम अकाम अगह अटह अनथ ब्रमथ अजूनी अमूनी न राग न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणाम समस्तुल प्रणाश्य गंजुल अनाम समस्त निवास कामंग विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणाशी ग्रीवन कुनिंदा समस्त निवासी अजाहेब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पहु शुभंग सर्वदा सर्वजुग।

सत्रह सहस पणिज्या अर्ध सहस पुंतीन कहिज्या भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कूँ आंकतरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मात एक न मान्यो सिमरत शास्त्र।

सोहिला शब्द सोहावा शब्द सोहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया जिन तुरहु लिखिया आया।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा क्रम सच्चा निशान सच्चे तू राख है लख करोड़ सच्चे सबतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच्चे।

मन साडा फिटै तन फिटै फेड़ करेन मन जूठै चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवै ता सच पाई पौड़ी चित।

दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सतमीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा भयान दूत जम दलै दै केवल नाम संग तेरे चलै।

नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवै महा उदास तभी सरथी वै अगन माहि होमत परान गन कसब है वर भूमदा न्यौली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमकर शरीर कटावै तो भी होमै मैल न जावै हर के नाम संसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे।

जय प्रसाद धरि उपर सुख वसै सुत परात मीत बंता संग हसै जय प्रसाद पीबै शीतल जला सुखदाई पवन पाप कामला जय प्रसाद भोगै सब रसा सगल समगरी संग साथ वसा दीने हस्त पाव करन नेतर रसना दिसे त्याग अवर संग रचना

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी के उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारी उमाह, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्धि आगत।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श वडभागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर।

खाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जिय का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ

बनाई। नानक जीवा देख बढ़ाई, उसका बाल नाही सहाथ, कर्म करम सर्वगुनाथ, आज्ञा कार्य बपरा जियो, जो पावे सोई हुन थियो। कबहु ऊच नीच मह बस, कबहु सोग हरख रंग हस, कबहु निंद चिंद व्यवहार, कबहु ऊब आकाश पायाल, कबहु बेत ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहु निर्द कर बह पात, कबहु सोय रह दिन रात, कबहु महाक्रोध विकराल, कबहु सर्व की उतर बाल, कबहु हुए बह बड़ राजा, कबहु पिखारी नीच का साजा। कबहु आप कीर्तन है आवे, कबहु पला पला कहवे, ज्यो प्रभ राखे तिव ही रह, गुरु प्रसाद नानक सच कह, कबहु हुए पंडित करे बखियान, कबहु मोहन तारी लावे त्यान। कबहु तट तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग हुए जियान, जोन परम परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवन चावे। जो देह पावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोय, कबहु साध संगति हो पावे, उस स्थान ती बहर न आवे, अंतर हुई ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रति करंग, सदा बसह पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जल आई खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत सुमाना, मेट गए गमन पाई बिसराम, नानक प्रभ के सद कुरबान सलोक। सुखी बसा मस्किनी आप निवार तली, बड़ी बड़े अहंकारिया, नानक गर्व गली अष्टपदी। जिसका अंतर राज अभमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आप सुखाओ कर्मवंत कहावे, जन्म मरे वह जोन परमावे। तान कूमका जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानक की हा मुक्त आगे सुख पावे, तनवंता हुई कार गर्वावे, तृण समान काश संग न जावे। बहुरस्कर मान ऊपर करयास, पाल पीतर ताक हुई विनाश, सबती आप जाना बलवंत, खिन में हुए जय बसमंत, कैसा न बाधा आप अहंकारी, तनम राय तुस्करे खुआरी। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कूट कर्म करे हाओ तारी, श्रम पावे सगले बिरथारी, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन करया तम नहिं द्रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे, आवस को जो पला कहावे, तिसह पलाई निकट नावे, सर्व की रीन जाका मन हुए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाना मुझती काश हुए, तब इसका सुख नाहीं कोय, जब ही जाना मैं किस करता, तब लाग गर्व जोन में फिरता, जब तारे को वैरी मीत, तब लाग नीह चलना ही चीत, जब लाग मुह मगन संग माई, तब लाग तनुराई दी सजाई, प्रभु कृपा ती बंधन टूटा, गुरु प्रसाद नानक हाव छूटा, सहस खट्टी लाख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछा पावे। अनक भोग विखिया की करे, नह त्रिपताव खाप खा मरे, बिना संतोख नहीं को राजय, सपन मनोरथ वृथ सब काजय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़पागी कसा प्राप्त हुए। करन करावन आप आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसका हाथ कहा विचार, जैसे दृष्ट करे तैसा हुए आप आप, आप राव सोए जो किशकिनो सपने रंग, सब ते दूर सब हो कै संग। बूजा दीखा कर बबीक, आप ही काप अनेक, मर न विंस आवे न जाय, नानक सद ही रह समाय, आप उपदेशा समझय आप, आपी रचया सबके साथ, आप गिनो अपन विस्तार, सब का शुष कहो करने आर, उसके बिन कह हो किश होय, थान धनंद्रे का सोय अपने चलत, आप करने हार, कौतुक करे रंग आप आर। मन में आप मन अपने बाही, नानक कीमत कहना जाय, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किन वखियानी, सच सच सच सब कीना, कूट मध्य किन।

निर्मल तेरी वाणी, घट घट सुनि श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, सलोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानक बहर बहरे अवतार अष्टपदी, संत का दुखन हर जा कटै, संत का दुखन जमती नहीं छुटै, संत का दुखन सुख सब जाई, संत का दुखन नरक मह पाई, संत का दुखन मत हुए मलीन, संत का दुखन सुबतिहीन, संत के हति को रखै न कुए, संत का दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पावै, संतन का दुखन काग जो लवै, संतन का दुखन सर्प जोन पाई, संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाई, संतन का दुखन तृष्णा मह जलै, संत का दुखन सब कुछ चलै, संत का दुखन तीज सब जाई, संत का दुखन नीच नीच आई, संत दुखी का थाऊ को नाही, नानक संत पावै ता ओहि पीगत पाही, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हतियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज दीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक सर्व रोग, संत के निंदक सदा बेजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावै ता उसका भी होय मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसा का नहीं मित, संत के दुखी कौ डान लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत के दुख ना सुख दे टरै, संत के दुखी कौ नाहि ठाओ, नानक संत पावै तां लय मिलाई, संत का दुखी अद बीज दे टूटै, संत का दुखी कित काज ना पा हुचै, संत के दुखी कौ दे अन भरमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर तीर्थ उथै, ज्यो सास बिना मृतक की लोथै, संत के दुखी की जड़ किस नाहि, आपन बीज आप ही खाहि, संत के दुखी कौ अवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाई, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाई, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पावक इ धन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यो उवाड़ तेल खेत महि दोहेला, संत का दुखी धर्म ती रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत, किरत निंदक तुरही पया, नानक जोधे पावे सुई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाई, संत के दुखी का दर्ग हमारा सजाई, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मर ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न दृष्टा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कृत न मेटै कोई, नानक जाना सचा सोए, सब कर तिसकी उह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहु दिन रात, तिसहि त्यावहु सास ग्रास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तह गुथिया, अपना की लाभ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करै तिस अपन नाम देवड भागी, नानक जन से सलोक, तजह सियानु सुरजन हो, सिमरहु हर हर राय, एक आस हर मन रखहु, नानक दुख परम पाओ जाय, अष्टपदी मानुख की टेक, वृथि सब जान, दिवन कवि का भगवान, जिसका दिया रह आघाई, बहुन तृष्णा लागे आई, मारा रखे कुआप, मानुख कह किसना ही हाथ, तुसका हुकुम बूझ सुख होए, तुसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्राव सोए, नानक विघन न लागा कोय, उस्तत मान मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लीह जियो, नैन पीख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसा सब संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटह पाप जपिय हर बिंद, कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दुर्ग नानक उजल मथा, बड़पागी ती जान जग माही, सदा सदा हर की गुण गाही, राम नाम जो करह विचार, सी धनवंत गणि संसार, मन तन मोख बोलह हर मुखी, सदा सदा जान दिय सुखी, एकु एक एक पछान, एत ओत की ओह सोजी जान, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपना सुजै, तिसकी जनो तृष्णा बुझै,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿ ਜਨ ਰਹਿਤ। ਅਨੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖੇ, ਅਨਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ। ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਹ ਨਾ ਲਾਗਹ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਕਉ ਹਰਿ ਭ੍ਰਮ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਜੈਸਾ ਸਹਿ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਹਟਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਾਹਿਬ ਬੂਜਿਆ। ਜਾਪ ਦੇਖਾ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਇਆ ਸਥੂਲ। ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰ। ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਆਪੀ ਆਪ ਸਗਨ ਮਹਿ ਆਪ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਾਜ ਥਾਪ। ਉਹ ਥਾਪ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਉ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅਲਖਿ ਅਭੀਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਕ ਸਗਲੇ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਆਪੀ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਵਡ ਭਾਗੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ। ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸ ਹਰਿ ਸੰਗ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ, ਕਰਨਿਆਰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੋਇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਜਿਹਤੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ। ਆਪਸ ਕਵਾਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ।

अपनी भगति लाए अष्टपदी जाचक जांजाच प्रभु दान कर कृपा दिव हर नाम साध जन की मांगा तूर पार ब्रह्म सरदा पूर सदा सदा प्रभु की गुण गाव सास सास प्रभु तुम्हें ध्याव चरण कम सिम लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत

तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोख पाई निम हर की गुण गायन कराज पोप गढ़ आय हर के नाम की कथा मान पाई बहु भोजन।

सोग कहु किस व्यापत। जब अपन आपु अपार ब्रह्मता मुह कह किस हुबत परम अपन की लावर तीजा नानक करने हार ना दूजा जब हुबत प्रभु केवल तनी तब बंद मुकत कहु किस कहु गनी। जब एक हरग में अपार तब नर्ग स्वर्ग कहु कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई तब शिव सकत कहु कित ठाई। जब आप अपनी जूत तरह तब कवन निडर कवन कत डर अपन चलताप करने आर नानक ठाकुर अगम अपार अवनाशी सुखापनासन तह जन्म मरण कहु कह विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोये तब जम की त्रास कहु किस होये। जब अवगत अगोचर प्रवी का तब चित्र गुप्त किस पूछत लिखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादी तब कौन छुटे कौन बंधन वादी। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ओपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन वैल कहु क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौवान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहु कीस। जह ज्योत स्वरूपी जो संग समाव नह किस पूह कौन द्रवताव करण करावन करने हार नान करती का नाह सुमार। जब अपनी सुवा अपन संग बनाई तब कवन भाई बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेद कतिब कह कुचीन। जब अपन आप उतार तब सगन अब सगन कह विचार। जह अपन ऊच अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचीरा। विस्मन विस्म रही विस्माद नानक अपनी गात जानहु आप। जह अशाल अशीद अभेद समाया ऊहा किस व्यावत माया। अवस्को आप आदिश तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक भगवंता तह कौन अचिंत खिला के चिंता। जह अपन आप पति आरा तह कौन कथ कौन सुनने हारा। बह बिहन दूज दूचा नानक उसका आप पाहूचा।